इज कम अलाइफ में लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि मदन मोहन ने बंबई आई मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया, जिसमें बंबई की हर बड़ी संगीत से जुड़ी हस्ती को बुलाया गया। जैसे कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजी कि मेरे और मोहम्मद रफी के बीचों बीच बैठे हुए किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसाकर कहा, चलिए हम दोनों चुपके से भाग चले। तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों को भला कौन सुनेगा। तो ये था उनका जादू। फुटपाथ फिल्म से जो हम आपको गजल सुनाने जा रहे हैं, तलत महमूद की आवाज में कमाल की गजल है ये और मुझे बहुत पसंद है ये।

दोस्तों 1964 में एक फिल्म आई थी जहां आरा। इस फिल्म के समय एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। संगीतकार मदन मोहन इसके गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे। प्रोड्यूसर चाहता था कि रफी साहब गाएं, मदन मोहन जिद पर अड़े रहे। जब मामला बनता नहीं नजर आया तो मदन मोहन ने अपने पास से पैसे खर्च किए, लेकिन ये गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफी साहब हालांकि इस बात से थोड़े नाखुश रहे, लेकिन इस फिल्म में गाने तलत महमूद ने गाए और सारे ही गाने सुपरहिट रहे। चाहे फिर वही शाम हो, या फिर तेरी आंखों के आंसू पी जाऊं, या मैं तेरी नजर का सुरूर हूं, सारे गाने एक से बढ़कर एक। लेकिन फिलहाल जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये एकदम अलग तरह की फिल्म, कमाल की फिल्म और कमाल के गीत। भोजपुरी फिल्म है, क्योंकि उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में गीत गाए बल्कि भोजपुरी फिल्मों में भी गीत गाए। और एक जो फिल्म है लागी नहीं छूटे रामा, इसका गीत हम आपको सुनाएंगे तलत साहब।

जी हाँ, अमवा के मुजरा से रस चुएला, मतलब रस क्या, आपकी आवाज, दलत साहब की आवाज और लता दी की आवाज, क्या खूबसूरत गीत है। और कमाल के गीत होते थे ना उस समय, संगीतकार कितनी मेहनत करते थे इन गीतों पर, सच में इसीलिए तो इतने सालों बाद भी ये गीत हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हिंदी फिल्मों में शामिल गजलों का जब भी अलग से जिक्र किया जाएगा, तलत महमूद का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जगजीत सिंह हो या पंकज उधास, ये तलत महमूद को अपना आदर्श मानते आए। यहां तक कि पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तलत महमूद पहले ऐसे भारतीय गायक हैं जिनका विदेश में कॉन्सर्ट हुआ। ये सिलसिला अमेरिका, ब्रिटेन, ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे मुल्कों तक फैला। वो दूसरे भारतीय गायक थे जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में गाना गाया था। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी गाना गाया था। ऐसा था उनका जादू। चलिए हम आपको एक और कमाल का गीत सुनाते हैं। फिल्म है हमारा संसार और इस बार तलत महमूद के साथ साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 9वीं तारीख दिन है शनिवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तुतन टाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री लाम त्रिंग और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अंटू कुमार दास और सुश्री शिखा डेका, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री कोंचो सांगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: India has traditionally had
3: भारत के

0: त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की

0: मांगी। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे हरिहरन, सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथी कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी भक्ति भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत हरिहरन सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथी कलाकारों से चंद हिंदी भक्ति भजन आकाशवाणी के दबाव

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथी कलाकारों के आवाजों में चंद हिंदी भक्ति भजन। इसके साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नंग सिनावाती मानंग, चाव सुविन वे लोंकन, सिराथम नमचुम नंग चनावा मांचे और चाव उबिन वे लोंकन के आवाजों में चंद आधुनिक खमती नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत नंग सिनावाती मानव चाव सुबिन में लोंकन नंग चनावा मांझे और सिराथम नमचुम से चंद आधुनिक खमती नवमो का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: Nang sinawati manang chau suvinwe longkan nang chanawa manje chau uvinwe longkan aur siratham namchumke inhi adhunik khamti nagmo ke saath hi karyakram pradeshik sangeet ab samapt hota hai. Aapki seva mein ye akashvani ka tawang kendra hai. Samay dopahar ke 3:30 hue hain. Chaliye ab sunte hain karyakram meri baat ke antargat Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya Tawang ke 11vi kaksha ki chhatrika Kumari Dorji Drema se Swachh Bharat abhiyan vishay par ek varta. Pesh hai karyakram meri baat.
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. मैं हूं कुमारी दोर्जी ड्रमा, पीएम श्री जेनवी तवंग. मैं 11वीं विज्ञान की छात्र हूं. आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश को साफ, स्वस्थ और सुंदर बनाना है. जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता हमारे स्वस्थ और सभ्यता का प्रतीक है. सोचिए अगर हमारी सड़कें गंदी हो, कचरा इधर उधर बिखरा हो और नदी नालों में गंदा हो तो हमारा देश कैसा दिखेगा. निश्चित रूप से यह न केवल अस्वस्थ होगा बल्कि हमारे छवि पर भी प्रभाव डालेगा. इसलिए स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है. स्वच्छ भारत सुंदर भारत. स्वच्छ भारत केवल सफाई अभियान नहीं है, यह एक जागरूकता आंदोलन है. जब हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखते हैं तो हम अपने स्वस्थ और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं. और स्वच्छता का मतलब सिर्फ सफाई रखना नहीं है, इसका मतलब यह भी होता है प्लास्टिक को अपने जीवन में कम से कम उपयोग करना, पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाना और पानी को साफ रखना भी होता है. कभी कभी हम विद्यार्थी जीवन में कुछ पर्सनल सफाई में भी लापरवाही हो जाते हैं. अगर हम अपने डेस्क और बेंच को साफ न रखें तो उसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. इसलिए छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाता है. कचरा अपने स्थान पर, तभी जीवन होगा स्वस्थ और प्यारा. और मैं आप सभी को एक मजेदार की बात बताना चाहती हूँ कि क्या कभी आप सभी ने कभी ध्यान दिया है कि अगर हम सफाई का ध्यान रखते हैं तो मच्छर, कीड़े और बुरे गंध हमारे पास कम आती है. तो साफ सुथरी आदत न सिर्फ हमें स्वस्थ देती है बल्कि परेशानियों से भी बचाती है. अंत में मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि आइए हम सभी स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय भागीदार बने, अपने आस पड़ोस को साफ रखें, दूसरों को जागरूकता करें और इस मिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत. जय हिंद, जय भारत.
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी दोजी ड्रमा से स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक वार्ता. आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय दोपहर के 3:33 हुए हैं. श्रोताओं, अब सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत. कार्यक्रम नारी संगीत में आज आप सुनेंगे पहला नगमा आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में, बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का.

अगला नगमा सुनिए सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मोनाली ठाकुर की आवाजों में। बिल्लू फिल्म के इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

लैला मजनू फिल्म से पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा अतीफ असलम और ज्योतिका टंगरी की आवाजों में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जॉय बरुआ ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए हीरो बंती फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में। गीतकार कौसर मुनीर तथा संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह और अजीज कौर के आवाजों में। कपूर एंड सन्स फिल्म के इस गीत को लिखा है डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने और संगीत से सवारा है तनिष्क बगची ने।

0: अर्को की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बरेली की बर्फी फिल्म का नगमा। गीत एवं संगीत दिया है अर्को ने। श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह, शालमाली कोलगारे और शिफाली आलवरेस की आवाजों में। जब हैरी मेट सेजल फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से अभी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा नगमा, स्वर एवं संगीत अमित त्रिवेदी का। श्रोताओं, अगला नगमा सुनिए सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। विशाल शेखर द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

विशाल दत्तलानी, शिफाली आलवरेस और साथियों के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का नगमा, बोल अन्विता दत्त के तथा संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है अतीफ असलम की आवाज में। अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के इस गीत को लिखा है आशीष पांडे ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत वीजी जोग से वायलिन वादन। राग है श्याम कल्याण तथा तबले पर संगत दिया है श्यामल बोस ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्यामल श्याम कल्याण राग पर वीजी जोग से वायलिन वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में कल मंत्री ने लिकावाली और सिली गांव में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न आधारभूत संरचना एवं परियोजना स्थलों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करें, ताकि युवा पीढ़ी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रख सके और उसे आगे बढ़ा सके। मंत्री ने लिकावाली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़कों पर यात्रा भी की तथा राज्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों और पुलों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक से मुलाकात की। निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एम्स गुवाहाटी से अनुरोध किया है कि वह क्षेत्र विशेष कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल करे और पूर्वोत्तर की सामाजिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करे। एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर संजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया है कि नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग को मजबूत करने के लिए एम्स गुवाहाटी अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। विधायक नाबम विवेक द्वारा उद्घाटित ये प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश के मधुमक्खी पालन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB द्वारा वित्त पोषित और एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसे नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च NECTR द्वारा RGU के सहयोग से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित हनी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी भूमि पूजन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसे क्षेत्र में एकीकृत शहद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तंत्र को और मजबूती मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा

0: आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम करते हुए जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। श्री शुभेंदु ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान पहुंचा है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा है कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोची से बैशाख के अवसर पर गुरु रविन्द्र देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र में इशारों पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही है। उधर यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्र नेतृत्व निर्णय लेगी। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रियों के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
4: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए गेलोंग जंपा वांगचू और भिक्षु गनु से चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में सुनिए जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रिंचिन यिमा से टीकाकरण के महत्व विषय पर हुई एक भेंट वार्ता। दोनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज में आनंद लीजिए अलबेला और कल हो न हो फिल्म के साज और गीत का आज शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए स्वदेश फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील रात्रि 8:15 पर। तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 10 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना में सुनिए गेलोंग नवांग शाक्या और साथियों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:00। चंद आधुनिक बंगाली नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तिंजन पेमा से नियमित योग और व्यायाम के महत्व विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए गदर 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मिथुन। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन। वेकअप सीट फिल्म से कविता सेठ। ऊंचाई फिल्म से नकाश अजीज। सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान और आयशा फिल्म से अमित त्रिवेदी, नकाश अजीज और ऐश किंग की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। कल शाम 4:00 बच्चों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बाल जगत में सुनिए आइडल इंग्लिश स्कूल तवांग के विद्यार्थियों से एक विशेष

प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के संचालक होंगे दोर्जी ड्रेमा। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए पंडित उल्लास बापट से संतूर वादन कल शाम 4:30 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित समाचार हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरी में सुनिए लामा केजांग नोरबू जी से देलो लिंगसा छुकी उपन्यास का दूसरा भाग कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिगजुंग लेरिम में सुनिए येशी थुपतेंग गेंदुन जी से आकू तोम्पा के लघु कथाएं कल शाम 5:35 पर। लेरिम सेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जिदन लेरिम में सुनिए गेलोंग जंपा वांगचू और भिक्षु गणों के भजनों का शेष भाग कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा में सुनिए महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग के अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं पर सीडीपीओ तवांग श्रीमती डोंडू पेमा से हुई एक भेंट वार्ता। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ में सुनिए माया सुखथंकर से कोंकणी भाषा का एक गीत का पाठ कल शाम 7:25 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में आनंद लीजिए शाबाश मिठू फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Jinjala dozo ma

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगवेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.

0: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है स्वस्थ संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में आज आप सुनेंगे जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी से जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रिंचिन निमा से टीकाकरण के महत्व विषय पर हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी ड्रिमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है डिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तवांग डॉक्टर रिंचिन निमा जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी तो श्रोताओं, आपको जरूर याद होंगे कि डॉक्टर साहब का आज हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल हुए और आप श्रोताओं को बहुत ही जरूरी जानकारियां पहुंचाए थे। तो आज फिर हमने एक बहुत ही विशेष विषय चुने हैं डॉक्टर साहब से चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताए थे कि डॉक्टर साहब DRCHO कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पद को संभाल रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये चर्चा करेंगे कि टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण शरीर को बीमारी से कैसे बचाता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीके जरूरी होते हैं, या टीकाकरण न कराने पर क्या जोखिम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और इस समय तवांग की क्या स्थिति है टीकाकरण को लेकर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया है कि स्वास्थ्य के बारे में कई बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, तो इसमें जैसे कि आपको पता है टीकाकरण जो हमारे बहुत सारा डिजीज यानी आपका बीमारियों को रोकथाम करने का सबसे पहले तो जो टीकाकरण का जो इम्पोर्टेंस है, हर जो टीकाकरण लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका सिर्फ जो टीकाकरण प्राप्त होता है उसी का प्रोडक्शन नहीं बल्कि उसका जनरेशन तक जो बीमार है उसको रोकथाम करने में सक्षम होता है। हमारे तवांग में वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज बहुत अच्छा है। अभी ऐसे कोई बच्चा नहीं जो कि अनवैक्सीनेटेड, एक दो बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, किसी कारण ले नहीं पाए, तो हम उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन ढूंढा है अपने ओर से, अपने डिपार्टमेंट के ओर से, और हम अपना स्टाफ लगा के हर जगह में जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन बनाए। और आपको ये बता दूं कि तवांग एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो हमें काफी दिक्कत आता है कि यहाँ कोई भी वैक्सीनेशन जब हम या स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन करता है या कोई भी वैक्सीनेशन का जो कैंपेन मोड में करता है तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जो हम लोग टूरिस्ट लोगों को भी हम लोग टारगेट करके वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए उसके हम लोग ढूंढने का, या तो वैक्सीन नहीं लगाए तो उन लोगों को देने का कोशिश करते हैं। तो हमारा टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण हम लोग का टूरिस्ट एंट्री पॉइंट जैसे कि आपका सेला के नीचे जंग है, जंग का हम लोग टीम लगा के वहाँ पे उन लोगों को वैक्सीनेशन का स्टेटस पूछ के वैक्सीन लगाने का टारगेट कर, या हमारा यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो भूटान साइड से भी हम लोग आए इन्फ्लक्स होते, तो हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि कोई अनवैक्सीनेटेड या कोई भी जो पोटेंशियली जो कोई डिजीज लेके आने का खतरा हो सकता है उन लोगों को भी हम लोग वैक्सीनेशन दे के यहाँ से भेजने का कोशिश करते
1: हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छे अच्छे जरूरी सुविधाएं हमें पहले से ही प्रदान कर रखे हैं, और साथ साथ आपके स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों तक इन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए पूरे 100% कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूकता कार्यक्रम से रूबरू कराते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे तवांग के लोग जो है, माता पिताएं जो है, ये जो टीकाकरण के महत्व, स्वास्थ्य के जो महत्व है, इसके बारे में कितने जागरूक हैं, वो कितने जानते हैं, या फिर आपको आज भी वही दिक्कतें आते हैं, उनको समझाने पड़ते हैं।
2: मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है वो लोग खुद जो हम लोग टीकाकरण दिलवाते हैं या हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उन लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करता है, ताकि जो टीकाकरण का जो बच्चे तक जो हम टीकाकरण देते हैं वो सही रूप से पहुंचाए और सही तरीका से दे। तो हम लोग अपना स्टाफ को सबसे पहले तो हम लोग ये हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वो लोग पूरा ट्रेंड एंड वेल ओरिएंटेड हो। और दूसरा बात है कि जैसे आपने अभी पूछा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स है, यहाँ का जो माता पिता है, वो लोग जागरूक है कि नहीं। हाँ, मैं ये बताऊंगा कि तवांग के जो अभी माता पिता है, जो यंग जनरेशन, सब लोग इसके ऊपर काफी अमल किया है, ध्यान देते हैं, और दे आर वेरी वेल ओरिएंटेड, और 100% तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन 99% पेरेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी पेरेंट्स है
1: जी, जी, जी।

0: बताना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि उन लोग भी एक दो पेरेंट्स है जो बच्चों को टीकाकरण नहीं लेना चाहता है या उन लोग मना करते हैं, तो मैं इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है तो हमें एक दो जगह जो बहुत ही इंटीरियर है ऐसे दो तीन गांव है, उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां एक दो माता पिता है जो अपने बच्चों को कुछ कारण से टीकाकरण नहीं लिया है। अच्छा। तो मैं 100% यहाँ में अजीब में नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2% पेरेंट्स है जो टीकाकरण लेने में मना करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी अब देख सकते हैं कि पहले की तुलना में बच्ची की मृत्यु जो है बहुत ही कम होने लगे हैं, कम हुए मतलब ना के बराबर होते हैं। पहले के जमाने में हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि उनके बच्चे जन्म के दौरान ही मृत्यु हो या फिर किसी बीमारी से मृत्यु हो गए थे। तो आजकल ये सारे समस्याएं इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सरकार ने हमारे लिए इतने अच्छे सुविधाएं प्रदान करके रखे हैं स्वास्थ्य को लेकर, और साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से हमें सेवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, 100% सेवा पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताएं कि कुछ माता पिताएं अब भी ऐसी हैं जो अपने कोई निजी विचार को लेकर अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको ये बताएं कि बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने पर उनको क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आगे चलकर जीवन में क्या समस्याएं आ सकते हैं।
0: तो ये बता दूं कि जो टीकाकरण है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग कई सारा जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीकाकरण दिलाते हैं। तो देखिए, ये जो नहीं लेने का भी कोई रीजन होता है, या तो एक रिलीजियस रीजन, या तो आपका कोई अंधविश्वास, या तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि वैक्सीन लगा के कुछ बीमार हो गया, या कोई रॉन्ग नोशन या कोई गलत मैसेज पहुंचा है, तो उससे डर के वो लोग नहीं लेता हो। तो मुझे एक तो पेरेंट्स से बात करना पड़ा है जो वैक्सीन लेना नहीं चाहता। तो ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारा पेरेंट्स जो जिन्होंने मना किया वो बिल्कुल मना करके नहीं लिया, ऐसे भी नहीं। मुझे कई इंटीरियर विलेज तक जाके माता पिता को मना के मैंने वैक्सीन दिलाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ, दे आर ओके विद दैट, वो लोग खुश है। लेकिन आज का डेट में 2-3 पेरेंट्स ऐसे भी है जो बिल्कुल नहीं माना। मैंने थ्रू अपना रिलीजियस लीडर, गांव का जो हेड है, जो पुजारी है, उन लोगों का थ्रू भी उन लोगों से डिस्कस कर उन लोगों को मनाने का कोशिश किया है, और या तो हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना नर्स या डॉक्टर को भेज के भी डिस्कस किया है, या तो हम लोग ने यहाँ पे पंचायत लीडर, पंचायती राज का जो लीडर्स है, उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करके मनाया। 99.9% तो हम लोग का यहाँ पे वैक्सीनेटेड है। तो एक दो पेरेंट्स बच्चा जो है बिल्कुल नहीं मान रहा, उसका रीजन ये बताया है कि उसका बच्चा बहुत वीक है या बीमार है, उसका वजह से नहीं लेना चाहता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जो बच्चा वीक है, अगर उसको मेडिकली लेने का सिचुएशन नहीं होता तो डॉक्टर या नर्स उसको बताएंगे, लेकिन अपना खुद से डिसाइड कर लिया मेरा बच्चा बहुत कमजोर है या बीमार है, इसका वजह से अगर इंजेक्शन या टीकाकरण ले लेता है तो और ज्यादा बीमार हो जाओ, ऐसे वो बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग सबको ये चर्चा के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन टीकाकरण जो देते हैं या वैक्सीन हम लोग देते हैं उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको बल्कि जो बीमार के लिए दिया जाता है तो बीमार को आपको लाइफ टाइम के लिए प्रिवेंट करता है। तो ये बता देता हूँ कि मैं 100 में 100% प्रिवेंट नहीं होता है, लेकिन 99.9% उसको प्रिवेंशन में सक्षम रहता है, उससे बहुत सारा बच्चा को जो वैक्सीन दिया गया उससे वो हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी मेरे आवाज सुन रहा है या आप दोनों का जो चर्चा सुन रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा चर्चा से उन लोग प्रभावित हो गया, अगर जिन्होंने भी नहीं लिया हो तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन लीजिए, ये टीकाकरण लीजिए, ताकि आपका बच्चा कभी इन फ्यूचर में ये सब जो प्रिवेंटेबल डिजीज, तो इससे आपको पीड़ित ना हो।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने भी कई बार ऐसे कहते हुए सुना कि उनके बच्चे अगर टीकाकरण लगवाते हैं तो उनको बहुत तेज बुखार होते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं या फिर बहुत बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या सचमुच टीकाकरण लगवाने के बाद ऐसी कोई समस्या आते हैं डॉक्टर साहब? अगर आते हैं तो ये कितने साधारण है, मैं आपसे सुनना चाहूंगी।
0: मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये आपका जो वैक्सीन या टीका हम लोग देते हैं तो उसमें आप आफ्टर इम्यूनाइजेशन तो उसमें आपका माइनर इफेक्ट होता है, जैसे आपने बताया बुखार या दर्द या लाल होना या इंजेक्शन साइड में लाल होना या थोड़ा बुखार या बदन थोड़ा दर्द होना, वो हो सकता है। वो एक दवाई डालते हैं जिससे उसका ये होने से उसका वैक्सीन इवन पोटेंट है, उसका शरीर में काम कर रहा है, वो इसका एक संकेत है।
1: जी,
0: तो ये नहीं कि वो अगर बुखार होता है तो हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आपका बच्चा को ये अगर टीका लगाए तो थोड़ा बुखार होगा या थोड़ा दर्द होगा या इंजेक्शन साइट में थोड़ा लाल हो जाएगा, इससे डरने का नहीं है, इससे आपको माइनर ई एफ आई

0: ये माइनर इफेक्ट है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपका बड़ा आदमी भी अगर बीमार हो जाता है तो इंजेक्शन साइड में थोड़ा दर्द होता है, लाल होता है, वो तो आपका नॉर्मल है। तो ये सब चीज से डरना नहीं है। मैं को ये बताना चाहूंगा कि ये माइनर इफेक्ट होता है वैक्सीन से, लेकिन इसमें डरने का कुछ नहीं है। अगर ये होता है तो आपका शरीर में वो दवाई काम करता है
1: जी,
0: तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे तवंग जिला के अंदर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज है जहाँ पे कर्मचारी जो है पूरे समय तैनात होते हैं, तो वो जो है नियमित रूप से एक टीकाकरण

0: जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे तवंग जिला के अंदर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज है जहाँ पे कर्मचारी जो है पूरे समय तैनात होते हैं, तो वो जो है नियमित रूप से एक टीकाकरण के जो शेड्यूल रखते हैं, तो उस डेट को उन बच्चों को लेकर सारे पेरेंट्स लेकर आने होते हैं। तो उस दौरान किसी बच्चे थोड़े से बीमार होते हैं, अगर जब वो बच्चे उसी तारीख को बीमार पड़ते हैं तो उस समय जो है वैक्सीन लगवाना कितना सही है, लगवा सकते हैं या नहीं?
1: वैक्सीनेशन जो आप टाइम टू टाइम उसका, सपोज एक बच्चे को आज वैक्सीन दिया है तो एक महीना बाद फिर लाने के लिए उसको बताया जाता है, तो उस समय में अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है या कोई कारण कुछ बुखार हो गया या उसका कुछ शरीर ठीक नहीं है, तो डॉक्टर का पास या तो नर्स का पास जाएगा, वो देख लेगा, पहले चेक कर ले, आप बताइए कि ये बुखार है इस तरह से या डायरिया है या उसका शरीर ठीक नहीं, आज लगवाना ठीक है कि नहीं। अगर वो चेक करे उसमें माइनर है तो लगवा सकते हैं, अगर उसका शरीर बिल्कुल ही ठीक नहीं या लगाने का वो सिचुएशन नहीं है तो वो डॉक्टर या नर्स वहां पे बता देगा कि आपका दो दिन बाद लाइए या नेक्स्ट हफ्ते लाइए। उसमें कुछ नहीं है कि आपका डेट अगर आज 28 को ही लगाना है, आज 28 को लगाया नेक्स्ट 28 को ही लगाना है, ऐसे नहीं कि वो 28 को ही लगाना है, हो सकता है तो उस टाइम में लगाना। अगर कुछ कारण से अगर उसको वैक्सीन लगाने का उसका बॉडी जो फिट नहीं है तो अगर एक हफ्ता बाद भी लगा सकता है, ऐसे नहीं कि वो वैक्सीन उसी दिन नहीं लगाएगा तो काम नहीं करेगा या उसका बदन में वो वैक्सीन जो कुछ अलग रूप से काम उसको इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो वो तो आपका जैसे कि मैं बताया पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा जो हेल्थ स्टाफ है जैसे नर्स डॉक्टर, वो लोग टाइम टू टाइम हम लोग इसके ऊपर ओरिएंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उसके ऊपर में कुछ भी डिस्कशंस होता है या उसको ट्रेनिंग देना होता है तो हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम एक्सपर्ट लोग ट्रेनिंग देते हैं, और ताकि हमारा जो बच्चे बेनिफिशियरीज जो टीकाकरण का बेनिफिशियरीज जिसको टीकाकरण मिलना है उसको सही मिले, सही दवा मिले और सही रूट मिले और सही टीकाकरण मिले।
0: जी जी, क्योंकि उसी तारीख को अगर कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं तो घर पर अपने आप से निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि डॉक्टर और नर्सेस हमेशा वहां पर तैनात होते हैं जहां पर जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर लेकर आए और उनकी सलाह जरूर सुने, है ना जी? और डॉक्टर साहब, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे तवंग जो है बहुत ही ठंड जगह है और हर जगह हर समय कोई पहुंच पाना, डॉक्टर या नर्स भी पहुंच पाना थोड़ी सी मुश्किल उनको भी होते हैं, हालांकि वो कोशिश पूरे करते हैं, लेकिन हमारे तवंग में कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर बहुत ही दूर दराज में लोग रहते हैं, नोमैड्स रहते हैं, उनके घर वही होते हैं और नेटवर्क की सुविधा हर समय नहीं रहते हैं, कभी कोई बच्चे घर पर पैदा होते हैं, होम डिलीवरी होते हैं, तो उनको जन्म के साथ साथ टीकाकरण तो लगवाने होते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे पैदा होकर एक महीने हो चुके हैं तो उनका टीकाकरण तो रह गया होता है, तब आपको पता चलते हैं, तो आप क्या करते हैं, किस तरह से उनके टीकाकरण जो है सही तरह से लगवाते हैं?
1: देखिए, आज का डेट में, आज के समय में तवंग एक ऐसे जगह है जहाँ पे लगभग 100% विलेज रोड कनेक्टिविटी आ चुका है।
0: जी जी।
1: और एक दो बस्ती जैसे लुगुथांग है वहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचा, बाकी जैसे मागो हो गया, तकसंग हो गया, और ऑलमोस्ट 100% जगह पे आपका नेटवर्क भी पहुंच चुका है और गाड़ी रास्ता भी पहुंचा। आपने जैसे बताया कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण हेल्थ स्टाफ नहीं पहुंच पाता है या जो बेनिफिशियरी है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, ऐसे एक दो जगह है जहाँ पे इस तरह का दिक्कतें आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर बस्ती में हमारे आशा वर्कर्स है, हमारा आंगनवाड़ी है, तो हम लोग आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी को भी टाइम टू टाइम लाइन लिस्टिंग, विलेज में बर्थ कितना बर्थ हुआ है, कितना डेट हुआ है, कितना इलिजिबल कपल है, उन लोगों को ये हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया गया और ट्रेनिंग दिया गया कि हर महीना अपडेट करके रिपोर्ट पहुंचे। तो अगर जैसे कि आपके आपने बताया कि दूर दराज में जैसे नोमैड्स है जो याक चराते हैं या गाय चराते हैं, वो लोग दूर जंगल में बैठते हैं, तो उन लोगों का वहां पे अगर कोई डिलीवरी होता है, हालांकि हम लोग का डिलीवरी जो हमेशा इंस्टीट्यूशनल के लिए ही हम लोग को उसको कोशिश करता है या ANC जैसे कि आपका गर्भवती माँ को हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम मिनिमम 4 बार चेकअप के लिए आते हैं, और उसी समय हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कर रही है, और ये जरूरी इसलिए है कि अगर दूर दरस में अगर वो डिलीवरी कोशिश करते हैं तो आपका मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी होने का चांसेस है, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, या तो कई तरह का अगर होम डिलीवरी करता है जहाँ पे हॉस्पिटल सुविधा नहीं है वहाँ अगर डिलीवरी कोशिश करता है या होम डिलीवरी करने की कोशिश करता है तो कुछ भी कारण उन लोगों को दिक्कत आ सकता है, या तो माँ का हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है या बच्चा के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चा को हमेशा हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल डिलीवरी करने का कोशिश करें। आपका रेडियो के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना भी चाहूंगा कि डिलीवरी जो आप हमेशा हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है ताकि

0: कि मेटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी को या कुछ दिक्कतें से बचे। तो जैसे कि आपको बताया कि आपने बताया कि अगर होम डिलीवरी हो जाता है तो मैं आशा लोग हम लोग इन्फॉर्म करते हैं और हम लोग हेल्थ इंस्ट्रक्शंस को भी ये दिया जाता है कि जैसे कि डिलीवरी होने के साथ साथ हम लोग पोलियो हो या BCG होता है ये सब दवाई जो ऑन बर्थ देता है इंस्ट्रक्शन। अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाता है तो 0 डोज आपका OPV देते थे, BCG हम लोग दे देते। लेकिन अगर कुछ कारण अगर दूर दराज में पैदा हो जाते हैं या घर में पैदा होते हैं, मैं आशा का थ्रू या हेल्थ स्टाफ के थ्रू उन लोग तक पहुंचने का कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सब दवाई टाइमली पहुंचे और अगर डिलीवरी घर में पहुंचे विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ हम लोग को जो दवाई उनको मिलना है वो टाइमली दिलाने का कोशिश करता हूं।
1: एक बच्चे की स्वास्थ्य के सफर जो है माँ के पेट से ही शुरू होते हैं, गर्भावस्था के दौरान से शुरू होते हैं। तो जब कोई महिला गर्भवती होते हैं तो उनको टीकाकरण लगवाना कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: ये इसी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, टिटेनस टॉक्साइड TT बोलते हैं तो वो देता है, आजकल हम लोग DD देते हैं। तो उसको गर्भवती होने के साथ साथ जैसे पता चल रहा है हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, फिर विद इन 1 मंथ फिर इंजेक्शन देते हैं। और जैसे कि आपका ये जो टिटनेस जो है आप नहीं लगाने के कारण आपका ड्यूरिंग डिलीवरी आपका जैसे बच्चे के जो अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेशन में काटना पड़ता है या उस तरह से कुछ गंदा चला जाएगा या उसका खून में कुछ, तो टिटनेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेटरनल माँ को भी बचाओ, अगर कोई कारण उसका अगर टिटनेस का बीमार लग जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो बच नहीं सकता, तो ये बहुत ही खतरा है। तो ये आपका गर्भवती के दौरान आपको ये TT का जो टीकाकरण है वो लगवाना बहुत ही जरूरी है।
1: और सब जैसे कि हमने हमारे चर्चे में इससे पहले जिक्र की थी कि अब जो है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य जो है हमारे सरकार द्वारा दिए गए सुविधाओं के कारण लाभ होने के कारण अब जो है मृत्यु के दर जो है बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के ये चर्चा में आपने जितनी भी सलाह दी हमारे श्रोताएं जरूर सुने और अमल जरूर करें और गर्भावस्था के दौरान छुपाए नहीं बल्कि अस्पताल आए, अपनी जांच करवाएं और TD की टीकाकरण जो है जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब हमारे आज के या कार्यक्रम के जो समय है अब समाप्त होने वाले हैं, तो आज आपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और हमें टीकाकरण के महत्व, टीकाकरण से क्या क्या फायदे होते हैं, नहीं लगवाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। तो डॉक्टर साहब मैं आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रिंचिंग निमा से टीकाकरण के महत्व विषय पर हुई एक भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं सुनिए दोनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज। साज और आवाज कार्यक्रम का पहला साज सुनिए फिल्म अलबेला से।

श्रोताओं अभी सांस भर सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया गीत बोल, समीर के और संगीतकार जतिन ललित।

चलिए श्रोताओं, अब इसी साज पर आनंद लेते हैं सोनू निगम के आवाज में जावेद अख्तर का लिखा नगमा, संगीत शंकर एजान लॉय का।

श्रोताओं, कल हो ना हो फिल्म के इस गीत के साथ ही दोनों और गीतों का कार्यक्रम साज और आवाज अब समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। केंद्रीय कॉरपोरेट मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोअर सियांग जिले के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लिखावाली में विभिन्न विभागों के प्रमुख, पंचायत सदस्यों, बीआरई अधिकारियों और एनएचआईडीसीएल

0: के कार्यकारी निदेशक के साथ समन्वय बैठक की। उन्होंने जिले में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास की प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी और वंचित राज्य के कल्याण और विकास को लेकर पूरी तरह से चिंतित है। 105 किलोमीटर लंबे अकाजन बामे सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की जनता के लंबे समय से चली आ रही मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सरकार को प्रस्ताव और नोट समय पर जमा करने और निष्क्रिय होकर इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से उन पर कार्रवाई करने की सलाह दी। एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ भूपेंद्र कुमार सिंह संजय ने आज ईटानगर के लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक से मुलाकात की। निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने एम्स गुवाहाटी से अनुरोध किया कि वह क्षेत्र विशेष कारणों की पहचान करने के लिए समर्पित अध्ययन और अनुसंधान पहल करे और पूर्वोत्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहारिक उपायों की सिफारिश करे। एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर डॉ संजय ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज के साथ स्वास्थ्य सेवा सहयोग को मजबूत करने में एम्स गुवाहाटी अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देगा। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री सुवेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद एक एक कर मंत्रियों के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडी और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। नाहरलगुन पुलिस ने कल पोलो कॉलोनी में चलाए गए एक नशा विरोधी अभियान के दौरान विजय पारांग नाम के एक संदिग्ध ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लगभग 30 लाख रुपए की संदिग्ध हेरोइन, नाइट्राजेफम टैबलेट और सिरिंज बरामद की, साथ ही 9,600 रुपए नकद भी जब्त किए। तलाशी अभियान के लिए पुलिस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर कुसनेन्दु देव ने किया। इसके आधार पर नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। नेशनल जीएलओएफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम और आपदा की तैयारियों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ईटानगर में बायोमेट्रिक सर्वेक्षण उपकरणों के सहयोग उपयोग पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना था जिनसे राज्य में पहचाने गए उच्च जोखिम वाले हिमनद झीलों के आगामी सर्वेक्षणों में भाग लेने की उम्मीद है। मत्स्य विभाग वेस्ट कामेंग जिले ने भारत सरकार के ICAR केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्था भीमताल के सहयोग से आज शेरगांव में एक प्रशिक्षण सह सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय विधायक सतीन चांबे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। प्रशिक्षण सत्र में रेनबो ट्राउट पालन के विस्तार और इको टूरिज्म तथा गोल्डन मासेर की स्पोर्ट्स फिशिंग के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को शामिल किया गया। 50 लाभार्थियों को डीप फ्रीजर, ट्राउट फीड, हैचिंग ट्रे और ट्रैफ तथा फीडिंग और नर्सरी टब भी वितरित किए गए। दिरांग में साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटेरियम कैटेगरी 2 की स्थापना परियोजना के लिए शासी परिषद की पहली बैठक आज अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय में वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त डॉ. दिलीप कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय नारांग कोयांग। हर्ष मल्होत्रा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेट अफेयर्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंडेड हिज 2-डे लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट टूडे। He chaired a coordination meeting in Lekhawale with department heads, panchayat members,

0: कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
0: एडमिशन कराने,
1: खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय शाम के 7:55 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम देशभक्ति गीत के अंतर्गत स्वदेश फिल्म से एआर रहमान का गाया एक देशभक्ति गीत।

स्वदेश फिल्म के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर, मलकापुर बुल्दाना महाराष्ट्र।

ट्रस्ट से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरेकर ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है कन्यादान फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। हजरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है शोभापुर बायपास मेरठ से दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जया और दर्शन बाय से।

कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है पद्मपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा कीर्ति अरोरा भूमिका अरोरा और ममता अरोरा ने जब जब फूल खिले फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत बोल सावन कुमार के और संगीतकार उषा खन्ना।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, समाचार संध्या तथा न्यूज 8 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पांचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए यह मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष पर है, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक है। तो जो भी टीम जीतती है उसके पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
0: जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पे तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
2: जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 रन का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
1: देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहां तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें एक छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहां पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहां पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच के बाद तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रंप कार्ड रहा है, वो है सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहां पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहां से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे, एक टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की

0: वापस भारत को दिलाते हुए।
1: और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप है, और यहाँ से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहाँ पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा। और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन, या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहां से एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को, जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
0: जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अच्छा प्रदर्शन करने का और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद एक अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में से केवल 2 अंक गवा कर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैस्ट।
0: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नजर कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा।
1: देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहां पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है। साउथ कोरिया को हराया है 10 बार की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहां पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का यह सुनहरा मौका है।
0: जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहां पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर एफसी ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा एफसी ने मोहन बगान एफसी के भी साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
3: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मैन और 70

0: गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
1: इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहां पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
2: बिल्कुल होगी, क्योंकि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है। हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा। और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहां से काफी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेजबान है, और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहां किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहां से जितने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी, और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे। और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
2: बिल्कुल, लेकिन वीर चोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
1: जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और अब बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहां नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहां भारतीय निशानेबाज जो लगातार हर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
2: बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
1: जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पे नजर डाल लेते हैं, जहां गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, मोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुक्रिया।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने

0: ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से

0: महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के चार लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA

0: ईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद ना तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event.